0: जोसलपाथौ नेपाल सम्बत चिन्छसौ पी खुद बछलागा चतुर्दशी थो रेडियो नेपाल ख अन्यनादिस जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संघीय संसद निगु सदनीय अधिवेशन थे वैशाख 28 गते सोमबार निनेसिया नेता इया नीति सतादी गुदु मन्त्री परिषद या सिफारिसे राष्ट्रपति पौडेल 28 गते निनेसिया नेता इले संघीय संसद भवन सिंह दरबारे संघीय संसद निगु सदनीय अधिवेशन सतादीगु राष्ट्रपति कार्यालय प्रवक्ता रितेश कुमार साक्या जानकारी ब्यादिल थोया निह प्रधानमन्त्री ओ मन्त्री परिषद या कार्यालय सिंहदरबारे मिग चोङगु मन्त्री परिषद बैठक वैशाख 28 गते निनेसिया नेता इया नीति संघीय संसद निगु सदनीय अधिवेशन आह्वान यायता राष्ट्रपति नाफा सिफारिस यागु कोचिगु ख। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संवैधानिक परिषद या काम कर्तव्य अधिकार व कार्यविधि नापाङ्गु संशोधन अध्यादेश 2083 मिग पिथनादी गुदु सरकार अन्थो अध्यादेश जारी ज्ञात राष्ट्रपति नापा यागु सिफारिस राष्ट्रपति पौडेल आइतबार पुनर्विचार यायता धासन लिता छोए हे धुङकानी मिग चङ्गु मन्त्री परिषद बैठक थो आदेश याता गथिख अथे हे राष्ट्रपति नापा हान सिफारिस यागु ख। मन्त्री परिषद हान सिफारिस या धुङका संविधान कथ राष्ट्रपति अध्यादेश जारी याना दिगु ख। सरकार सेना चङ्गु सहकार्य बचतकर्ता या धेबा नापाङ्गु वालनिसी लिता बिगु जुगुदु वङ्गु वैशाख 9 गते ज्या यागु सेनासङ्गु सहकार्य व्यवस्थापन समिति सहकारी व बचतकर्ता या मागु धलमुङका बचत रकम लिता बिगु ज्या यागु ख। समिति यागु अध्ययन कथ सेनासङ्गु सहकार्य अथे ने खुदो बचतकर्ता या अथे पि खुगु अर्ब बचत लिता बि मालिगु जुगुदु व मध्ये यकोथे ची धङ्गु बचतकर्ता जुगु समिति धागुदु न्यागु लाख शिवे मोढेबा या बचतकर्ता तेता चिधङ्गु बचतकर्ता ओ ग्यागु लाख शिवे चे चोङ्गु रकम बचतकर्ता तेता त धङ्गु बचतकर्ता या कथम वर्गीकरण यागुदु मुकन हे खुगु दो मध्ये ग्यागु लाख शिवे उप बचतकर्ता यैपी चिन्च्यादो दुगु समिति सदस्य सचिव रविन ढकाल जानकारी ब्यादिल भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल बचत लित बिगु नीति यिक्कु ज्या धुङ्क गु आलिता बिगु ज्या न्याकिगु थयादिल। सरकार निजामती सेवासँग दुगु ट्रेड युनियन नापाया व्यवस्था खारेज जना बिगुदु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शाखा अधिकृत विवेक बिडारी मिगछगु विज्ञप्ति पिथसे छु नेपाल एन याता संशोधन यायता देखको अध्यादेश 2083 पाके निजामती सेवा एन 2049 या दफा 53 सन् दुगु ट्रेड युनियन नापाया व्यवस्था खारेज जुगु जानकारी ब्यादिगु ख। अध्यादेश थो व्यवस्था यायमा मन्त्रालय विभाग आयोग सचिवालय व फुक्क सरकारी निकाय सन् दुगु ट्रेड युनियन या कार्यालय बन्द यायता उजम बिगु ख। सरकार ट्रेड युनियन या प्रयोजन नीति छेला चङ्गु सरकारी भवन कार्यकक्ष सवारी जोला नापाया मेगु सेवा सुविधा थते स्वापुदुगु कार्यालय या त लित बी तथा तगुदु ट्रेड युनियन या थिति स्तरीय समिति सन् दुथ्यापी कर्मचारी पिन्त तोके यागु दरबन्दी कथा या ज्या भाला खटियागु व्यवस्था मिले या त न तया तगुदु। नेपाली काङ्ग्रेस संसद समन्वय बोर्ड बैठक सुशासन व सेवा भिङ्किएको नीति सरकार यहाँको पलायता कया प्याची जुगु कोछिगुदु पार्टी सभापति गगन कुमार थापा या सभापतित्व पार्टी या केन्द्रीय कार्यालय मेघसङ्घु संसद समन्वय बोर्ड या बैठक सुशासन व सेवा प्रवाह भिङ्किएको नीति सरकार यहाँको कोचिना या त कया प्याची जुगु कोचिनाको पार्टी कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद दुलाल जानकारी ब्यादिल। पूर्वी पहाडी व तराई या जिल्ला नापा स्वाइगु बिपी राजमार्गे चानेसिया इले सवारी दिकिगु जुगुदु मिगचङ्गु जिल्ला सुरक्षा समिति बैठक थौनिसी छेलिगु याना मेगु सुचौ मौबले तक्क या नीति सनिल याता इलनिसे सुथसिया याता इ तक्क बिपी राजमार्ग निजी व सार्वजनिक सवारी जोल याके गुली पङ्ग थनेगु कोछिगु ख। काभ्रे पलाञ्चोकिया प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकुल कुमार अधिकारी मिगचङ्गु जिल्ला सुरक्षा समिति बैठक बिपी राजमार्ग या भकुण्डे बेसी खुर्कुर सडक खण्डे मेगु सुचौ मयबुले तक्क यातायात न्याके गुली पङ्ग थनेगु कोछिनागु जानकारी ब्यादिल। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जोखिम जागो सडक सवारी वैगु वनिगुली बन्द याना यात्रु वा सवारी जोलय सुरक्षा सुनिश्चित यायता याकेता सकल जिल्ला प्रशासन कार्यालय याता उजा बिगुदु प्राधिकरण जोखिम जुगु थासे सवारी वे वनिगुली अवज्ञा यैमा सवारी चालक वा सवारी धनी यता कार्यवाही यायता नापा उजा बिया तगुदु सरकार सार्वजनिक सेवा प्रभा यता छेकापतिक थ्याङ्केगु आज नापा न्याकगु सरकारी कुरियर सेवा झिङ्गुगु जिल्ला स न्याकिगु जुगुदु ज्याजो न्या धुङ्कानी आतक सोध सचिव सुई छगु राहाधानी स्वपुदुगु जिल्ला तक ढुवानी यानागु हुलाक सेवा विभाग या महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनी जानकारी बियादिल वो मध्ये खुस खुई नेगु राहादानी सेवाग्राही छेसन ठेङ्कागु थल वे धुङ्कगु विभाग जानकारी बिगुदु सरकार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 याता ई कथम पुनरावलोकन याइगु जुगुदु शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप याता पुनरावलोकन यायता नुगु लपु बिता प्राध्यापक डाक्टर बाल चन्द्र लुइटेले समेत जकते छगु कार्यदल निसुगुदु हिलासङ्गु परिवेश याता पाठ्यक्रम याता ई कथम देका यङ्केगु नैतिक शिक्षा याता सफुके दुत्या केगु याना कार्यदल निसुनागु मन्त्रालय सरकार भारतीय पर्यटक वा भारतीय दुगु नेपाल दुहा वैगु मेगु देया पर्यटक ते त अफुके त अनलाइन सेवा न्याकिगु जुगुदु अर्थ मन्त्रालय मातहत्या भन्सार विभाग स्थल मार्ग जुया नेपाल दुहा वैगु विदेशी सवारी जोल तेस अनलाइन सहे थल ज्याकिता राजस्व पुले फैगु प्रणाली विकास याना सञ्चालन हगु ख थो ज्याजो याता अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले उले ज्याना दिगु ख नुगु प्रणाली न्याव आवनिसे नेपाली सवारी जोल कया दुहा वैगु भारतीय पर्यटकको शोक गुदेया पर्यटक अनलाइन सहे थगु धल ओ राजस्व पुले फैगु जुगुदु थयान्य भन्सार नाका वया थुज्यागु जोल तेस भौतिक कथा अस्थायी इजाजत का मागु व्यवस्था दयाचुङ्गु ख नेपाल प्रहरीय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो विद्युतीय कारोबार नापा थिति एप हो प्रणाली छेला बैङ्कको वित्तीय संस्था या खाता सन् दुगु ढेबा खुया चोङ्गुली सावधानी कगाता इनाफियागुदु ब्युरो छगु सूचना पाखे थिति मनुते गु मोबाइल कनेक्ट आइपी नापा स्वागु वो मिले जुइगु नातया थिति मोबाइल नम्बर वो थिति एलर्ट छुइगु सी दया चोङ्गु जानकारी बिगु ख प्रयोगकर्ता तेता फिसिङ लिङ्क छोया मनुते गु धल वो बैङ्क खाताके अनधिकृत पहुँच थेङ्का तदङ्गु ल्याके बैङ्क खाताके दुगु ढेबा खुइगु प्रविधि उपया चोङ्गु ब्युरो या थापुदु ब्युरो थुज्यागु अनधिकृत लिङ्क मचाकेता व सचेत जुइता सकलदति इनाफ यानागु प्रवक्ता दिलीप कुमार गिरी जानकारी ब्यादिल जिल्ला अदालत ये व्यवसाय शेखर गोलसाया त अनुसन्धान नीति हिरासत ते त अनुमति मोबिगु आदेश यागुदु न्यायाधीश मोना सिंह या इजाल समिग गोलसाया त हिरासत तया अनुसन्धान या त म्या तने मजुगु आदेश यागु ख व्यवसाय गोलसाया त धितो पत्र व बिमा नापा या कसुरे अनुसन्धान नीति प्रहरी थोए वैशाख 14 गते जोङगु ख रक्षा मन्त्रालय न्यानाचुङ्गु आर्थिक दया सोलाया आजु कथा चेगु प्रतिशत शिवे उप प्रगति केङ्गुदु सोलाया प्रगति समीक्षा नापा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या नङ्केगु समितिया मेगया बैठके कोशी कोरिडोर चामताङ घोम्पा सडक आयोजना कर्णाली सडक आयोजना हो बेनीघाट आरूघाट लार्के भन्ज्याङ सडक आयोजना या 100% भौतिक प्रगति जुगु केङ्गु जानकारी बिगुदुसा अथियाना ये तराई मधेस दूर्त मार्ग सडक आयोजना या सुई पेङ्गु 0.5% राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय या सुई यागु फुटी ने सुङ्गु 0% व बङ्कर निसेम ब्यारेक आयोजना या प्रगति नि सुङ्गु फुटी नेगु 0% प्रगति जुगु मन्त्रालय या थापुदु प्रहरी वैदेशिक लजका अतिथि देशे छुए गुथासे लाखौं दा कापी सोमैसित जोना सार्वजनिक आगुदु सोलोखुम भुया सुई छ दुमा शक्ति राय सिन्धुपाल्चोकिया सुई गुद दुमा बिमला दोङ्गो या गोकर्णेश्वर चोनीमा सुई छदया रोशन तामाङ या त जोना सार्वजनिक आगु ख पर्यटन विभाग साहसीको ज्ञाना पुगु कासा मिते के त इजाजत पौका त उजाउ बिगुदु बम्जी जम्पिङ स्विङ क्यानोनिङ जिप लाइन स्काई ड्राइभिङ जिप कोस्टर जेट्सकी मोटर बोट नपाया थिति साहसिकका समेत के त दर्तायना थते इजाजौ इजाजत पौ क्याता उजम्बिगु ख विभागीय सूचना अधिकारी हिमाल गौतम अथज्याको कासा इजाजत मक्कासे मन्या केता वो याका चोङ्गुली लच्छी दुने अनुमति क्याता इनाफियागु ख वैगु जेठ 10 गते निसिन डोल्पाया थिथि थासा यार्सा गुम्बा मुङ्के गुनिति च्याकी गुजुगुदु मिगचुङको सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक जेठ 10 गते फुकम पाटन यार्सा गुम्बा मुङ्के गुनिति च्याकेगु कोसिनागु से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जया निमित्त कार्यालय प्रमुख विज्ञान सेन जानकारी ब्यादिल यार्सा गुम्बा मुङ्केगु नितिन से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज लागा वा डिभिजन वन या लागा फुकम पाटने आम सर्वसाधारण नीति च्याकीगु वेकल जानकारी ब्यादिगु ख आदेशम पिने अबुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नाप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प होर्मुजे अमेरिकी सेना इरान या नेगु डुङ्गे आक्रमण यागुदु होर्मुज उर्मुजे दुगु जहाज यता मुक्त यात अमेरिकी सेना थते इरानी डुङ्गे आक्रमण यागु ख इरानी विदेश मन्त्री अमेरिका या थ्याकु ज्यासु थमलागु नेथना दिलसा थ्वे दथ्यो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प अन्थो सैन्य अभियान अस्थायी कथन त्वा धगु थया दिगु दु इरान नापा सहल द्वितीयङ्गुली थो अभियान आयात दिगु ख चिनिया हुनान प्रान्त पटक्का कारखाना मुया निखुमा मनुष्यगु दुसक फुइछमा मनोखापा जुगु दु मौसम या जानकारी थौँ देनियङ्क छुन छुन तासे नङ्याना वा नापा चपु कुवा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापु दु मिग सोनिगले नि खुगु फुटी निगु डिग्री सेल्सियस तक लुगु क्वाज थौनी पेङ्गु निसे नि खुगु डिग्री सेल्सियस तक लुइगु धुकुमा यागु दुसा थौ सुथे न्याता इजुया झिङ्यागु मिनेटे लुगु सूर्य खुता इजुया पिनेगु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार पुवन चिताइले नेपाली भाषा या समाचार नेनादिस शुभ
1: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौं
2: नागरिक लगानी कोष

अब प्रस्तुत गर्दैछौ आज रेडियो नेपाल बागमती प्रादेशिक प्रसारणमा साँझ 6 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू बारे जानकारी।

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवासस्थित विजय झा से सुनल जा मैथिली भाषा में समाचार। सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया आगू बढ़ावा संवैधानिक परिषद के बैठन आह्वान कैल गए। संवैधानिक परिषद के अध्यक्ष से सम्मान्य प्रधानमंत्री के निर्देशन हिसाबे परिषद सचिवालय बृहस्पति दिन के लिए बैठक बजौलक। संवैधानिक परिषद के सचिवालय बुध दिन जारी कने पत्र हिसाबे बैठक 2083 बैसाख 24 गति बृहस्पति दिन साँझ के 5 बजे प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय सिंह दरबार में बैसत। बैठक के मुख्य कार्यसूची प्रधान न्यायाधीश के नियुक्ति सिफारिश रहा। बैठक में सहभागी हेबाक लेल सभामुख डोल प्रसाद आर्याल, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सविता गौतम, प्रतिनिधि सभा के विपक्षी दल के नेता भीष्मराज आंगदेम्बे आ प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख रूबी कुमारी के आमंत्रण कैल गेल छ। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव संग नेपालक लेल नॉर्वे के राजदूत ड्यागनी मियोस आइलैंडचोर स्थित उपराष्ट्रपति के कार्यालय में शिष्टाचार भेंटवार्ता कलने। इस अवसर पर नेपाल नॉर्वे बीच के द्विपक्षीय संबंध के विविध आयाम में विचार विमर्श भेल छल। उपराष्ट्रपति यादव नॉर्वे नेपाल के घनिष्ठ मित्र राष्ट्र भेल चर्च करत सन 1973 में कूटनीतिक संबंध स्थापना भेल समय से दुनू देश बीच मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रही आल बतौलन। नॉर्वे के बहुपक्षीय मंच सब में राष्ट्रसंघीय शांति कार्य तथा जलवायु परिवर्तन जेहन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा में निर्वाह कने भूमिका प्रशंसनीय रहल चर्च करत उपराष्ट्रपति यादव आव वाला दिन में नेपाल नॉर्वे संबंध में नया आयाम थपायत जाता संबंध आर सुदृढ़ होत जबाक अपेक्षा कलन। राज्य कोष से दोहरा आ असीमित सुविधा लेवा वाला प्रवृत्ति के नियंत्रण करवाक लेल सरकार सक्रियता देखौलक। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय से पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी सब उपयोग कर रहल सवारी साधन के यथार्थ विवरण आइए उपलब्ध कराब गृह मंत्रालय के निर्देशन देल गेल। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बीतल अध्ययन के किछ पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी सब कानून तोकने से अधिक सवारी साधन उपयोग कर रहल वा अलग अलग निकाय से दोहरा सुविधा ल रहल तथ्य भेटलाक बाद काल गृह संघ स्पष्ट विवरण मांग कैल गेल। पत्र में पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व सभामुख आ पूर्व राष्ट्रसभा के अध्यक्ष सब ल रहल सुविधा के पूर्ण विवरण आइए कार्यालय समय भीतर ईमेल मात्र पठेबाक लेल ताकेता कैल गेल। एहि कदम के संबंध में जानकारी देत प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के प्रेस तथा अनुसंधान विज्ञ दीपा दहाल, राज्य कोष के दुरुपयोग रोका आ सुशासन कायम करवाक लेल सरकार कड़ाई के संग विवरण मांग कने बतौलन। हुनक हिसाबे कानून तोकने से बाहर जाकर लेनी सुविधा के पहचान कर प्रणाली के पारदर्शी बनाब अ निर्देशन के मुख्य उद्देश्य रहल। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री सीतावादी बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासंधि CRC कन्वेक्शन ऑन दी राइट्स टू चाइल्ड प्रतिवेदन तैयार करवाक प्रतिक्रिया के प्रभावकारी रूप में आगू बढ़ावा मंत्रालय प्रतिबद्ध रहल बतौलन। मंत्रालय आयोजना के ने बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासंधि CRC के प्रतिवेदन प्रक्रिया के संबंध में अभिमुखीकरण कार्यक्रम में मंत्रीवादी बाल अधिकार के संरक्षण प्रवर्धन आ CRC प्रतिवेदन प्रक्रिया के प्रभावकारी रूप में आगू बढ़ेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। ओ लैंगिक हिंसा मुक्त समाज निर्माण के लिए अपन अपन दिस से योगदान करत सब व्यक्ति, परिवार, समुदाय, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, संचार माध्यम तथा सरकार वाला संघ संस्था निकाय में अनुरोध से कलन। कार्यक्रम में CRC के अवधारणा नेपाल के प्रतिबद्धता प्रतिवेदन प्रक्रिया बाल अधिकार के प्रमुख क्षेत्र सब तथा आवा वाला कार्ययोजना के संबंध में विचार विमर्श कैल गेल छल। मंत्रालय बाल बालिका संबंधी ऐन 2075 संशोधन करवाक लेल सर्वसाधारण के राय से मंगने अच्छे। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम द्वारा संचालित लागू औसत सेवनकर्ता खोजी एवं सुधार अभियान 2083 के प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन करवाक उद्देश्य से परसा में जिला स्तरीय सरकार वाला निकाय बीच आई बीरगंज में समन्वयात्मक बैठक तथा अंतर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भेल। जिला प्रशासन कार्यालय परसा के सभा हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम प्रमुख जिलाधिकारी भोला दहाल के अध्यक्षता में संपन्न भेल। कार्यक्रम में बीरगंज महानगर पालिकाक मेयर राजेश मान सिंह, जिला प्रहरी कार्यालय परसा के प्रहरी उपरीक्षक सुदीप राज पाठक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 13 बीरगंज के प्रमुख SP मोहन बहादुर छेत्री, वड़ा प्रहरी कार्यालय वीरता के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विक्रम सुवेदी तथा जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय परसा के प्रमुख युवराज कटवाल लगात की उपस्थिति रहल छल। कार्यक्रम में अभियान के पहल चरण अंतर्गत तैयारी अवस्था, कार्यान्वयन रणनीति तथा लागू औसत नियंत्रण के उपाय के संबंध में
विस्तृत विचार विमर्श कयल गेल छल। सहभागी सब लागू औषध दुर्व्यसन न्यूनीकरण सेवनकर्ता के पहचान उपचार और पुनर्स्थापना के लिए समन्वयात्मक ढंग से आगू बढ़वाक चाही पर जोर देने छलथि। नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो विद्युतीय कारोबार संबंधी विभिन्न ऐप तथा प्रणाली की उपयोग का बैंक तथा वित्तीय संस्था के खाता में रहल रकम चोरी भ रहला से सावधानी अपनेबाक लेल आग्रह कयलक अछि। ब्यूरो एक सूचना मार्फत विभिन्न व्यक्ति के मोबाइल में कनेक्ट आईपीएस संग मिलित जुलित नाम राखि के विभिन्न मोबाइल नंबर तथा विभिन्न अलर्ट पठावित आयल भेटल अछि। प्रयोगकर्ता के फिशिंग लिंक पठा कर व्यक्तिगत विवरण आ बैंक खाता में अनधिकृत पहुँचा कर अधिक मात्रा में बैंक खाता के रकम चोरी करे वाला प्रवृत्ति बढ़त गेल। ब्यूरो के कहब ब्यूरो एहन अनधिकृत लिंक नहीं खोल तथा सचेत रहबाक लेल आग्रह कने प्रवक्ता दिलीप कुमार गिरी अय के जानकारी दिलन। धौंसा में 7 वर्षीय बालिकाओं पर जबरदस्ती करने के अभियोग में जिला अदालत धौंसा एक गोटे के जन्म कैद के सजा सुनौलक। जिला अदालत धौंसा के न्यायाधीश कपिल मणि गौतम के इजलास से मिथिला बिहारी नगर पालिका वार्ड नंबर 10 ठेरा रामनगर के 19 वर्षीय पप्पू मंडल के जन्म कैद के फैसला सुनौलक। फैसला गत बृहस्पति दिन सुनायल गेल आ मंगल दिन प्रमाणीकरण कयल गेल अदालत जनौलक। अदालत के हिसाब 2078 फागुन 28 गते भेल घटना में मंडल 7 वर्षीय बालिका पर जबरदस्ती करने के ठहर कयल गेल। अय कुसुर में पीड़ित बालिका के क्षतिपूर्ति स्वरूप 3,00,000 उपलब्ध करेबाक लेल सेहो आदेश देल गेल छे। आ मौसम समाचार। अखन नेपाल में पश्चिमी आ स्थानीय वायु तथा नेपाल के पूर्वी भूभाग नजदीक निचका वायुमंडल में रहल न्यूनचापीय क्षेत्र के प्रभाव रहल अछि। एहि प्रभाव रहला से अखन मधेश बागमती गंडकी लुमनी आ कर्णाली प्रदेश लगायत बाकी हिमालय पहाड़ी भूभाग में साधारणतः बादल लागल अछि। बाकी तराई भूभाग में आंशिक बादल लागल अछि। कोसी आ बागमती प्रदेश के एक दू स्थान में हल्का वर्षा भ रहल अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के हिसाबे आई राति कोसी प्रदेश लगायत देश के पहाड़ी आ हिमालय भूभाग के साधारणतः बादल लागत आ बाकी भूभाग में आंशिक बादल लागत। कोसी प्रदेश के किछ स्थान मधेश तथा बागमती आ गंडकी प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग के किछ स्थान में मेघगर्जन ठनका सहित मध्यम वर्षा तथा बाकी प्रदेश के हिमालय भूभाग के दो स्थान में मेघगर्जन आ ठनका सहित हल्का वर्षा हिमपात के संभावना रहल महाशाखा जनौलक। आब खेल समाचार। नेपाली क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी आईसीसी एक दिवसीय ऑलराउंडर वरीयता में उल्लेख्य सुधार कलने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद सार्वजनिक ने नया वरीयता में दीपेंद्र 31 स्थान में ऊपर गेल छथि। ओ 12 स्थान अपन सुधार कने छथि। दीपेंद्र नेपाल के T20 राष्ट्रीय टोली के कप्तान सेहो छथि। नेपाल क्रिकेट संज्ञान हुनका T20 क्रिकेट टोली के जिम्मेवारी देने छल। घरेलू मैदान में किछ दिन पहिने ही सम्पन्न आईसीसी विश्व कप लीग 2 अंतर्गत नेपाल संयुक्त अरब एमिरेट्स आ ओमान सम्मिलित त्रिकोणात्मक सीरीज में ऑलराउंडर प्रदर्शन ओ कयने छलथि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस यूक्रेन प्रस्ताव के एकपक्षीय युद्ध विराम के उल्लंघन करत रात भर अधिक स्तर पर ड्रोन आ क्षेपयास्त्र आक्रमण के यूक्रेनी अधिकारी आरोप लगौलक। कीव के हिसाबे ई आक्रमण शांति प्रक्रिया के पुनः कमजोर बनौलक। यूक्रेनी पक्ष के हिसाबे रूस एक रात में 108 लड़ाकू ड्रोन आ 3 क्षेपयास्त्र प्रहार कने छल। यूक्रेन आह्वान केने युद्ध विराम मई 6 के मध्य रात से लागू होब के कहल गेल बावजूदो मॉस्को अय के स्वीकार केने औपचारिक संकेत नहीं देने बताल गेल छ। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की किछ दिन पहिने रूस मई 9 में होवे वाला विजय दिवस के परेड के ध्यान में रखत छोट समय के लिए युद्ध विराम घोषणा केने बतौने छलथि। मुदा कीव के हिसाब पछिला आक्रमण मॉस्को वास्तविक उद्देश्य शांति निर्भर सैन्य प्रदर्शन के प्राथमिकता देने देखौलक। अहि संदर्भ में यूक्रेन के विदेश मंत्री एनरी सिविगा सामाजिक संजाल मार्फत रूस के कदम के कड़ा आलोचना करत मॉस्को शांति स्वीकार केने आ कथित युद्ध विराम के आह्वान कूटनीतिक नहीं भा प्रचारात्मक भेल ओ टिप्पणी कलन। विश्वव्यापी सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में अपन स्थान मजबूत बनेबाक लक्ष्य के संग भारत 41,40,00,000 बराबरी 2 नया सेमीकंडक्टर परियोजना के स्वीकृति दिलक। यह निर्णय से देश के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के उदयमान केन्द्र के रूप में स्थापित करवाक सरकारी प्रयास के थप गति देबाक अपेक्षा कयल गेल छै। सरकार सोम दिन राति स्वीकृति देने ई परियोजना मध्य एक LED डिस्प्ले उत्पादन सुविधा अछि त दोसर सेमी कंडक्टर पैकेजिंग यूनिट अछि। ई दुनू थपायल संगे भारत में एहन परियोजना के संख्या 12 पहुँचल अछि। एहि मे लगभग 17.20 अरब डॉलर बराबरी कुल लगानी प्रतिबद्ध रहल बतायल गेल अछि। भारत सन 2021 से घरेलू चिप उत्पादन क्षमता में विस्तार करबाक रणनीति आगू बढ़ावित आल। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुन रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संविधान संशोधन के लिए बहस पत्र तैयार करने के लिए गठित कार्यदल ने पूर्व महान्यायाधिवक्ता और कानून क्षेत्र के विज्ञों के साथ की चर्चा। जनमत पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार से अपना समर्थन लिया वापस। सरकार ने निजामती सेवा के 8 और स्वास्थ्य सेवा के 4 राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण किए रद्द। 12 के शिमला स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित 6 उद्योगों से उत्पादन हुए शुरू। और ईरान समझौते के लिए नहीं माना तो और तेज होगी बमबारी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कथन। अब समाचार विस्तार से। संविधान संशोधन के लिए गठित कार्यदल ने आज पूर्व महान्यायाधिवक्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा की। ये बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार एवं कार्यदल के संयोजक असीम शाह के संयोजन में हुई। बैठक में शासन प्रणाली, चुनाव व्यवस्था, संघीय ढांचा, न्यायपालिका का पुनर्गठन, संवैधानिक निकायों की संख्या और समावेशिता जैसे विषयों पर सुझाव दिए गए। पूर्व महान्यायाधिवक्ता डॉ. युवराज संगरौला ने संशोधन का उद्देश्य स्पष्ट करने, स्थानीय स्तर को गैर दलीय बनाने और अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों का अध्ययन करने की जरूरत बताई। पूर्व महान्यायाधिवक्ता सविता भंडारी ने कहा कि कानून से ज्यादा उसका सही क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है। उन्होंने विदेश में रहने वाले नेपाली नागरिकों को मतदान अधिकार देने, प्रदेशों की संख्या घटाने और मंत्रालयों में दोहराव खत्म करने का सुझाव दिया। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख की वकालत करते हुए न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता बताई। पूर्व महान्यायाधिवक्ता महादेव प्रसाद यादव ने संविधान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नेतृत्व की नैतिकता पर जोर दिया, जबकि मुक्ति नारायण प्रधान ने मौजूदा अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें और मजबूत करने की बात कही। अन्य वक्ताओं ने चुनाव प्रणाली में सुधार, संवैधानिक आयोगों की समीक्षा और संघीय ढांचे को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत बताई। कार्यदल के संयोजक शाह ने कहा कि बढ़ती राजनीतिक बहस, नई पीढ़ी की सुशासन और भ्रष्टाचार विरोधी मांगों के कारण संविधान संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई है। सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक परिषद की बैठक बुलाई गई है। परिषद के अध्यक्ष भी रहे प्रधानमंत्री के निर्देश पर परिषद सचिवालय ने कल गुरुवार के लिए बैठक तय की है। संवैधानिक परिषद के सचिवालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार बैठक 2083 वैशाख 24 यानी गुरुवार को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में होगी। बैठक का मुख्य एजेंडा प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश करना है। बैठक में भाग लेने के लिए सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविता गौतम, प्रतिनिधि सभा में विपक्ष के नेता भीष्मराज आंगदेम्बे और उपसभामुख रूबी कुमारी को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने पूर्व विशिष्ट पदाधिकारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहनों का वास्तविक विवरण उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय को सख्त निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के हालिया अध्ययन में पाया गया कि कुछ पूर्व पदाधिकारी कानूनी सीमा से अधिक वाहन उपयोग कर रहे हैं या अलग अलग निकायों से दोहरी सुविधाएं ले रहे हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की प्रेस तथा अनुसंधान विज्ञ दीपा दहाल के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व सभामुख और पूर्व राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष द्वारा ली जा रही सुविधाओं का पूरा विवरण मांगा गया है। सरकार ने राज्य कोष से दोहरी और असीमित सुविधाओं पर रोक लगाने और सुशासन कायम करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है। गृह मंत्रालय से प्राप्त विवरण के आधार पर तय सीमा से अधिक सुविधा लेने वालों के वाहन वापस दिए जाएंगे और व्यवस्था को और व्यवस्थित किया जाएगा। सरकार ने वरिष्ठ चिकित्सक और चिकित्सा शिक्षाविद प्राध्यापक डॉ. जगदीश प्रसाद अग्रवाल को प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का अवैतनिक स्वास्थ्य सलाहकार नियुक्त किया है। मंत्रिपरिषद बैठक ने यह निर्णय लिया, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री के प्रेस तथा अनुसंधान विज्ञ दीपा दहाल ने दी। डॉ. अग्रवाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान IOM के पूर्व डीन भी रह चुके हैं। वे देश की स्वास्थ्य नीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों और चिकित्सा शिक्षा सुधार से जुड़े विषयों पर प्रधानमंत्री को परामर्श देंगे। दाहाल के अनुसार डॉ. अग्रवाल बिना किसी पारिश्रमिक या आर्थिक सुविधा के विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवा प्रदान करेंगे। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने सरकार द्वारा लाए गए संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये संविधान निर्माण के समय रखे गए मूल उद्देश्य के विपरीत है। सिंह दरबार स्थित संसदीय दल के कार्यालय में सांसदों के प्रशिक्षण के बाद बाहर निकलते समय थापा ने कहा कि सरकार को संविधान की सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। उनके अनुसार संवैधानिक निकायों पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण न हो, इसलिए संवैधानिक परिषद की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब सरकार अपने अनुकूल लोगों की नियुक्ति के लिए अध्यादेश ला रही है। सभापति थापा ने यह भी कहा कि भूमिहीन सुकुम्बासियों के पुनर्वास में राज्य को कठोर और क्रूर नहीं होना चाहिए। नेपाली कांग्रेस ने बताया कि आगामी संसद बैठक में पार्टी की भूमिका के बारे में जानकारी देने के लिए संघीय संसद के दोनों सदनों के सांसदों को प्रशिक्षण दिया गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री सीता वादी से नेपाल में चीन के राजदूत चांग माओ मिंग ने शिष्टाचार भेंट की। मंत्रालय में हुई इस मुलाकात में नेपाल और चीन के ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। मंत्री वादी ने कहा कि नेपाल वन चाइना नीति के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सामाजिक विकास, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार संरक्षण, ज्येष्ठ नागरिक सेवाएं और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रालय नेपाल चीन संबंधों को और परिणाममुखी बनाने में भूमिका निभाएगा। बैठक में स्थानीय नेपाली महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रचार और बाजार पहुंच, नमूना वृद्धाश्रम केंद्र की स्थापना और विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सेवाएं और सहायक सामग्री उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। राजदूत माओ मिंग ने नेपाल चीन के ऐतिहासिक और विश्वासपूर्ण संबंधों को महत्व देते हुए कहा कि चीन सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकों के संरक्षण, सशक्तिकरण और समावेशी विकास के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करेगी। सरकार ने निजामती सेवा और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े 12 राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग ने यह कदम उठाते हुए नेपाल निजामती सेवा आयन 2074 के तहत 8 और नेपाल स्वास्थ्य सेवा आयन 2053 के तहत 4 ट्रेड यूनियनों को खारिज किया। निजामती सेवा के तहत नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन, नेपाल राष्ट्रीय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मंच, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल और स्वतंत्र राष्ट्र सेवक कर्मचारी संगठन नेपाल का पंजीकरण रद्द किया गया है। इसी तरह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के नेपाल स्वास्थ्यकर्मी यूनियन, स्वास्थ्यकर्मी यूनियन नेपाल, राष्ट्रीय स्वास्थ्यकर्मी संघ और राष्ट्रीय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन का पंजीकरण भी रद्द किया गया है। विभाग के प्रवक्ता मणिनाथ गोप ने इसकी जानकारी दी। ये सभी यूनियन पहले संबंधित कानूनों के तहत पंजीकृत थे, हालांकि वर्तमान सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए सार्वजनिक सेवाओं में ट्रेड यूनियनों से जुड़ी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी होने के बाद ये यूनियन पहले ही निष्क्रिय हो चुके थे। जनमत पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार को दिया गया समर्थन वापस ले लिया है। प्रदेश प्रमुख के कार्यालय ने आज एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि संविधान के अनुसार गठित वर्तमान सरकार को दिया गया समर्थन जनमत पार्टी ने वापस ले लिया है। जनमत पार्टी के संसदीय दल के नेता चंदन कुमार सिंह सहित प्रदेश सभा सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता कृष्ण प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने की औपचारिक जानकारी कल प्रदेश प्रमुख कार्यालय में दर्ता कराई गई थी। इसी आधार पर प्रदेश प्रमुख कार्यालय ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी सार्वजनिक की। पेयजल मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पेयजल तथा साफ सफाई अनुसंधान, नव प्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केंद्र को अस्थायी होल्डिंग सेंटर के रूप में उपयोग किया जाएगा। काठमांडू के विभिन्न स्थानों पर स्थित सुकुम्बासी बस्तियों से विस्थापित लोगों को अस्थायी रूप से रखने के लिए लगभग 100 लोगों की क्षमता के साथ इस केंद्र को आज से संचालन में लाया गया है। शहरी विकास मंत्रालय के अनुरोध पर पेयजल मंत्रालय ने केंद्र खाली करने का निर्देश दिया था। उसी निर्देश के अनुसार आज से तालीम केंद्र खाली कर दिया गया है। केंद्र के कार्यकारी निदेशक एवं इंजीनियर राम कुमार श्रेष्ठ ने जानकारी दी कि विस्थापितों को रखने की मांग आने के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम रोककर स्थान खाली किया गया है। उन्होंने कहा कि आज से करीब 100 विस्थापितों को यहां अस्थायी रूप से रखा जाएगा। बारा के सिमरा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज में स्थापित 6 उद्योगों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के तहत 833 बीघा जमीन में से 343 बीघा क्षेत्र में विभिन्न ब्लॉकों में ये उद्योग स्थापित हैं। प्राधिकरण के प्रमुख पप्पू गिरी के अनुसार आधा दर्जन से अधिक उद्योगों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। यहां एक दर्जन से अधिक उद्योग निर्माणाधीन भी हैं। सेज में स्थित पशुपति सेरामिक्स प्राली सिरेमिक उत्पाद बना रहा है जो लगभग 450 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दे रहा है। वर्तमान में सेज के सभी संचालित उद्योगों में 700 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। सब इंजीनियर अजय कुमार चौधरी के अनुसार यहां औसतन उद्योगों में 2 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक का निवेश हुआ है। सेज में उद्योगों को प्रति वर्ग मीटर 5 रुपए की दर से लीज पर जमीन दी जाती है। सिमरा सेज में ए ब्लॉक में 333 बीघा, बी ब्लॉक में 128 बीघा, सी ब्लॉक में 49.5 बीघा, डी ब्लॉक में 133 बीघा और ई ब्लॉक में 178.5 बीघा जमीन शामिल है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच ताजा घटनाक्रमों के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध और नाकेबंदी एक समझौते के साथ खत्म हो सकती है, लेकिन अगर ईरान किसी समझौते पर राजी नहीं होता है तो बमबारी और तेज हो सकती है। बमबारी की चेतावनी देते हुए उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में लिखा, दुख की बात यह है कि बमबारी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर और ज्यादा तेज होगी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान वो देने पर राजी हो जाता है जिस पर सहमति बनी थी और जिसे उन्होंने एक बड़ी कल्पना बताया है तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान किसी समझौते पर राजी नहीं होता है तो बमबारी फिर से शुरू हो जाएगी। इससे पहले एक एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस का मानना है कि वो ईरान के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमति के करीब है। एक्सियोस ने 2 अमेरिकी अधिकारियों और 2 अन्य सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान संशोधन के लिए बहस पत्र तैयार करने के लिए गठित कार्यदल ने पूर्व महान्यायाधिवक्ता और कानून क्षेत्र के विज्ञों के साथ की चर्चा। जनमत पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार से अपना समर्थन लिया वापस। सरकार ने निजामती सेवा के 8 और स्वास्थ्य सेवा के 4 राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण किए रद्द। बारा के सिमरा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित 6 उद्योगों से उत्पादन हुए शुरू और ईरान समझौते के लिए नहीं माना तो और तेज होगी बमबारी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
4: 4G LTE मोबाइल सेट संबंधी नेपाल टेलिकम को सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
5: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
6: नेपालको समावेशी आवाज।